0: Mirchi, it's hot.
1: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं जचदा।

0: जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात और सी
0: यार 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ फोन ते गल करती हूँ
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे

Mirchi. It's hot.

0: पहले मुझे लगता था ये बीमारी सिर्फ इंस्टाग्राम, टिकटॉक और शायद फेसबुक की है, बट देन आई रियलाइज दैट दिस बीमारी हैज इन्फिल्ट्रेटेड डेटिंग एप्स एज वेल. You know what I'm talking about? Of course you don't. I will tell you. ये केक मर्डर क्या होता है? हाँ, आप सीधा सीधा अपना बर्थ डेट क्यों नहीं लिख सकते? This is the day I was born to make your life miserable. ये भी चलेगा. केक मर्डर? There is no such thing as केक मर्डर. आपके सिर्फ 3 फंक्शनल ब्रेन सेल्स हैं, तभी आप ऐसी चीज लिख सकते हो. अदरवाइज इट इज जस्ट अ वे ऑफ अनोइंग समबडी एंड वेस्टिंग देयर टाइम. मतलब मैंने इतने सारे लोगों को डेटिंग ऐप पर ये लिखते हुए देखा ना, केक मर्डर ऑन 27th of February, एंड यू आर लाइक यार तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था. 27th of February शुड नॉट एग्जिस्ट इन द कैलेंडर एट ऑल, बिकॉज यू आर सेइंग थिंग्स लाइक केक मर्डर. इतना बड़ा इंसान हो गया, स्कूल में नहीं है, चेंज कर ले प्रोफाइल पर, ये सब. यू साउंड लाइक अ कंप्लीट इडियट. दैट सेड, अगर आपको भी डेटिंग एप्स पर एक पर्टिकुलर पेट पीव है कि जहां ये देख लिया वहां मैंने लेफ्ट स्वाइप करना है, बिकॉज खून खोलता है ना आपका, व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट इट इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. टेल मी व्हाट इज इट ऑन डेटिंग एप्स दैट रियली अपसेट्स यू, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट. रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
1: मिर्ची, इट्स हॉट.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना बताना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है। शो में हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल स्पॉटलाइट्स, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लियर के लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन। The song features Elvish Yadav. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 10। स्टे कनेक्टेड फॉर द काउंटडाउन। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
0: नंबर 10।
2: हो चुप

0: हर्ष नुसी की आवाज में गाने का नाम साड़ी सुन, सात हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार और गाना नंबर 10। ये उन गानों में से है जिनके मैं लिरिक्स कभी भी ठीक से गा के नहीं बता पाऊंगी, बस धुन गा दूंगी और समझ जाओ।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। अभी के अभी जाओ इंस्टाग्राम पे, फोन हाथ में ही रहता है, कनेक्ट करो @RJ कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कई बार ऐसा होता ना कि गाने के बोल नहीं याद रहते, सिंगर कौन है वो भी आप में भी भूल जाएं, लेकिन वो शुरू वाली धुन या कोई इंस्ट्रूमेंटल पीस वो कहीं से भी आप सुने एकदम पूरा गाना याद आ जाता है। सिर्फ गाना ही नहीं, फिर गाने की वीडियो, सिंगर की हिस्ट्री सब याद आ जाती है। हर कंपोजर चाहता है कि उनके गाने में ऐसी टेक अवे मेलेडीज हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल पार्ट हो जिन्हें कहीं से भी हम सुने और गाने के साथ जोड़ते हैं। एक आर्टिस्ट जो बहुत सक्सेसफुली ये करते हैं इस बादशाह। चाहे आप गाने के लिरिक्स से अग्री करे ना करे, लेकिन बीच में एक मेडली होती है जिसपे आप थिरक ही जाते हैं, लाइक दिस वन इन मर्सी। माय फेवरेट बादशाह इंट्रो हैज टू बी कर गई चुलका, ये वाला पार्ट सच पावरफुल आइकॉनिक इंट्रोज कि एक बार गाना सुनने के बाद आप उसे गुनगुनाते रहेंगे। नाउ @RJ कनिका इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको बादशाह के एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ। जल्दी जल्दी @RJ कनिका पर आओ और बताओ ये कौन से गाने का इंट्रो है। @RJ कनिका और इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ, साइड वाले को मत बताओ, आई नो बहुत इजी वाला है। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला गाना जो है ऐसे आर्टिस्ट का है जिनकी आवाज ही इतनी आइकॉनिक है दैट यू नो इट्स संजू राठौड़। गाने का नाम है बैंगल्स। 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक बैंगल्स इज ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एश किंग का किनिया सोनी ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 9।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: फरक की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे. अ नई नवेली एंट्री दिस वीक, डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 6. मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर तारे को इतनी जोर से मैनिफेस्ट किया कि वो हमारे शो में डेब्यू कर चुका है ऑन नंबर 6. उससे पहले हमने सुना गाना नंबर 7 पर ज़ारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी, इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. यू नो, हर पार्टी में एक टाइम आता है जब सिर्फ पंजाबी गाने चल रहे होते हैं. कहीं ना कहीं पिछले 10-15 साल में हमारा एसोसिएशन विद पंजाबी म्यूजिक ही सिर्फ ये था. एंड जब मैं कहती हूँ ना हमारा, आई मीन वो लोग जिन्हें पंजाबी बोलनी या समझनी नहीं आती, और जितनी भी आती है वो सिर्फ गानों से आती है, अपने फेवरेट आर्टिस्ट और सिंगर से आती है. लेकिन पिछले 4-5 साल में आई हैव सीन अ मैसिव ट्रांजिशन. और मेरे जैसे लिसनर के साथ ही, जो पहले सिर्फ पंजाबी गानों को डांस वाले गानों की तरह कंसिडर करती थी, आज आई हैव माई मोस्ट रोमांटिक फेवरेट्स फ्रॉम पंजाबी सॉन्ग्स. एंड ऑनेस्टली अब ये प्रूव भी नहीं करना पड़ता तो क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आती तो क्या मैं गाने सुन नहीं सकती. बिकॉज आर्टिस्ट लाइक AP टिल्लों, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, उन्होंने वो गैप ही क्लोज कर दिया. एंड इस लीग के आर्टिस्ट में एक नए फेवरेट है कॉल्ड कुंवर, जिन्हें आज हम एक स्पेशल स्पॉटलाइट देने वाले हैं. बंदा बटिंडा का है, टोरंटो में बेस्ड. काफी इंटरेस्टिंग उनका म्यूजिक है, पंजाबी फोक को लेके उसमें हिप हॉप R&B का तड़का लगाते हैं एंड बैंगर्स ऑन बैंगर्स रिलीज कर रहे हैं. कुंवर का एक गाना है कॉल्ड क्रेजी फॉर यू, जिसके पीछे सब क्रेजी हो गए हैं. सच अ बिग सोशल मीडिया हिट दिस सॉन्ग हैज बीन. और बिल्कुल वही वाली फीलिंग है जो एक बंदे को जब उसे किसी पे क्रश होता है तब जो एक फीलिंग होती है ना, दैट आई हैव गॉन क्रेजी, मैं उसके बारे में कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ, दिन में भी, रात में भी, नींद में भी. फोन बार बार चेक करना, गेड़ी मारते हुए बस वही सोचते रहना, दोस्तों से मिलना सो दैट हम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि उसके बारे में ना सोचें. ये सॉन्ग उसी को सेलिब्रेट करता है. इट्स अ वेरी हाई एनर्जी, फुल ग्रूवी, लेट नाइट सॉन्ग भी है, पार्टी सॉन्ग भी है. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आर्टिस्ट का नाम है कुंवर, गाने का नाम है क्रेजी फॉर यू. आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Crazy For You by Coer this week on our Gaana Spotlight at RJ Kanek on Instagram पर आओ. बताओ मुझे कोई ऐसा गाना जो आज भी आप रोज सुन रहे हो पर उसके लिरिक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं. वो पंजाबी गाना हो सकता है, हरियाणवी गाना हो सकता है, इंग्लिश गाना भी हो सकता है, पर अच्छा लगता है तो लगता है. एट RJ Kanek पर आके मुझे बताओ आपका वो कौन से वाला गाना है. नाउ बैक द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अनीश और कारण, हृदय का गाना. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5.
1: नंबर 5.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 3।

0: इसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है शीशा। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उससे पहले नूर खान मधुर एक्सो का आरजू दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi
1: पर, this is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी है, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। ट्रस्ट मी, इट रियली मैटर्स अ लॉट। कभी कभी हम किसी को कुछ बात बताते हैं कि हाँ आपका ये काम यहाँ देखा था, या कभी कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, करते वक्त शायद हमें रियलाइज नहीं होता कि वो दूसरे इंसान के लिए कितनी बड़ी डील होती है। कुछ तारीफें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर याद रह जाती हैं, कुछ इंटरेक्शंस ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। मेरे लिए वो आप लोगों के मैसेजेस हैं, एंड दैट पर्टिकुलर शो विच आई रिमेंबर, मेरा पहला शो था ऑन एयर, साल था 2019, अगस्त में ही मेरा पहला शो गया था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, एंड मैंने फुल एडमिट कर रखा था शो पर कि मेरा पहला शो है। इतने सारे मैसेजेस आए मुझे आप लोगों के, यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल द बेस्ट करने का, बहुत मजा आ रहा है एक गाने के बारे में, सो यू स्टार्टेड एंगेजिंग विद मी एंड इट मेड माई डे। अब मैं वो पुराना शो सुनती हूँ तो आई रियलाइज कि इतना भी अच्छा नहीं था, पर इट वॉज योर लव, योर कॉम्प्लीमेंट्स जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। और एक आर्टिस्ट के साथ तो ये और भी गहरा होता होगा, किसी फैन का मैसेज या किसी ऐसे इंसान से तारीफ जिन्हें आप खुद अपना आइडल मानते हैं। आई रिमेम्बर ऐसी ही मेरी कॉन्वर्जेशन हुई थी अरमान मलिक के साथ बैक स्टेज एक अवार्ड फंक्शन पे, आफ्टर उन्हें एक अवार्ड मिला। पर अरमान ने मुझे कहा दैट उन्हें जितने भी अवार्ड मिले, सोनू निगम ने जब एक बार अरमान को फोन किया था और तारीफ करी थी कि बॉय यू किल्ड इट, मैं तेरा गाना सुन रहा था रेडियो पे और मजे आ गए, सोनू निगम का वो कॉम्प्लीमेंट अरमान के लिए हर अवार्ड से ज्यादा मीन करता है। पिछले साल इसी शो पर मेरी सोनू निगम जी से बात हुई थी और मैंने उनसे इस बारे में पूछा, एंड दिस इज व्हाट ही सेड।
3: अरमान टोल्ड मी दैट कोई अवार्ड या कोई वैलिडेशन उसके ऊपर नहीं है, ही सेड सोनू निगम कॉलिंग मी कि तेरा गाना रेडियो पे सुना है और तूने अच्छा गाया है इज अ बिगेस्ट अवार्ड ही हैज रिसीव्ड।
4: मैं इस फीलिंग को समझता हूँ, जब हमारे बड़ों ने हमारे बारे में कुछ कहा है, जब मंदाड़ी साहब ने मुझे बैक स्टेज कहा था एक बार, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम, मार्वल एट द वे यू सिंग, एंड यू शुड हैव, यू आर बोर्न इन द रॉन्ग एरा, यू शुड हैव बीन बोर्न इन आवर टाइम्स, वी वुड हैव गिवन यू द राइट कॉम्पिटिशन। ये मुझे अब इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। लता जी बोले मुझे सोनू निगम पसंद है, जगजीत सिंह बोलते थे मेरा फेवरेट है सोनू निगम और ए आर रहमान, तब ए आर रहमान भी नए थे, मैं भी नया था, सो यस आई वैल्यू दोस कॉम्प्लीमेंट्स।
1: यही बात है ना, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज कोई ट्रॉफी नहीं बट ये कॉम्प्लीमेंट है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वी हैव टू प्ले द सॉन्ग जिसे सुन के सोनू निगम की तारीफ निकल गई, हमारी 10 साल से निकल रही है, अरमान मलिक की आवाज, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है मैं रहूं या ना रहूं, आई कांट बिलीव इस गाने को 10 साल हो गए। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

The vocal capacity of Arman Malik is unparalleled and this song, अभी भी मुझे goosebumps आते हैं इस गाने को सुन के. I think this will go down as one of those classics जो मैं आज से 10 साल बाद भी play करूंगी और हमें ऐसा ही feel होगा. Arman Malik की आवाज, Arman Malik की composition, that was मैं रहूं या ना रहूं. At RJ Kalyan on Instagram पर आओ and tell me about your story. कभी कोई ऐसा compliment मिला हो जो आज भी बहुत special feel कराता है, मुझे आके बताओ. Back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटलेखा का गाना. It's a Cook Studio भारत song. गाने का नाम है ए अजनबी. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके ये गाना पहली बार टॉप टू में गया है. ए अजनबी फ्रॉम कोक स्टूडियो भारत. 16 हफ्ते इस काउंटडाउन पर बिताने के बाद पहली बार ऑन गाना नंबर 2. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 2.

0: on the show. It's time for what we call
1: Kanika's Kasar Classic.
0: कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं. और ये हमारे शो का सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड सेगमेंट है. इतने सारे DMs, इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि ये वाला गाना, वो वाला गाना. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज लकी अली का तेरे मेरे साथ. इस गाने के बाद इतने सारे थैंक यूज आए, इतने सारे और रिक्वेस्ट आए, और उन बहुत सारे रिक्वेस्ट में से द सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले दिस वीक इज

गाने का नाम है दीवाना तेरा बाय द वन एंड ओनली सोनू निगम। साल 1999, म्यूजिक साजिद वाजिद का, लिरिक्स फैज अनवर के। ये तब के हिंदी पॉप म्यूजिक की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉप एल्बम में से एक थी एंड ये गाना उसका टाइटल ट्रैक। बट बियॉन्ड ऑल द नंबर्स, बियॉन्ड द सेल्स, आज 2026 में भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ, इट टेक्स अस बैक टू दोस सिंपलर टाइम्स यार, जिसके बारे में बस अब हम कहानियों में सुनते हैं, जब प्यार प्यारा था, इनोसेंट था, एक भोला बंदा, वो पहले पहले प्यार वाली चीजें, यू नो, जब आप किसी को चाहते थे और बस चाह कर ही खुश हैं, एक तरफा प्यार में खुश हैं, तेरी मर्जी तो आए ना आए। आई रिमेम्बर सोनू निगम ने हमें कई दफा इस शो के जरिए बताया है दैट इतने सारे लोग उनके पास आते थे, बोलते थे ये गाना सुन के इतनी जोर से प्यार आया कि मैंने जाके प्रपोज ही कर दिया। एक्चुअली 90s एंड अर्ली 2000s का ये वेरी प्रपोजल फर्स्ट सॉन्ग था। तब ने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, लेट्स फील द लव इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम। दीवाना एल्बम से दिस इज दीवाना तेरा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनेका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10, एंजॉय।

What an utterly butterly song, man. Sonu Nigam ki awaaz and the range in this composition. Gaane ka naam Deewana Tera on a cassette classic this week at RJ Kaneko on Instagram par aao. 90s 2000s ke yehi wale gaane, you know, it makes us feel all the love again. Kaun sa hai wo gaana? From the pop classics, humse aake share karo. We might feature your favorite next week. Now back to the countdown. It's time for the numero uno song of the week. ये गाना 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर डटा हुआ है. पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, यानी इस हफ्ते एक पोजीशन ऊपर जंप करके वापस इसने नंबर 1 की पोजीशन ले ली है. गाने का नाम है बैरन, आर्टिस्ट का नाम है बंजारे. दिस हरियाणवी सॉन्ग इज एवरीवेयर एंड वी आर हियर फॉर इट. अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. बंदी का नाम है आरजे कनेका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. एंजॉय. नंबर 1.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: Authentic, original, and better than our right.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: सबसे खतरनाक चीज चेंज नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है बदलाव को पहचान ना पाना। और इस वक्त बॉलीवुड बिल्कुल उसी मोड पर खड़ा है। ऑडियंस बदल चुकी है, उसकी पसंद बदल चुकी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि फिल्मों को ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा। हेलो, आई एम सुरेन सुंदरम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, जहां हर हफ्ते सिर्फ गानों की रैंकिंग नहीं बल्कि बॉलीवुड की धड़कन भी सुनाई देती है। शुरुआत कर रहा हूं विद गाना नंबर 20, व्हिच इज फ्रॉम धुरंधर एंड इट्स स्टिल माय फेवरेट।
0: नंबर 20।

टेनिस के बाद एक बिल्कुल नई एंट्री। टाइटल भी क्वर्की, गाना भी क्वर्की, और जब क्वर्कीनेस की बात हो रही है तो अमित त्रिवेदी से बेहतर नाम मिलना मुश्किल है। उन्हीं का कंपोज किया हुआ, उन्हीं का गाया, कुमार भाई के लफ्जों के साथ नंबर 19 पर डेब्यूइंग राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का टाइटल सॉन्ग नंबर 19।

0: स्लिपिंग डाउन बाय वन पोजिशन, अरिजीत सिंह का गाया तुझको फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन अपनी मेमोरीज की हार्ड ड्राइव से एक ऐसा चैप्टर ढूंढ के निकाल रहा हूँ दैट इज गोना टेक यू बैक टू योर फ्रेंड्स एंड टाइम। इंडिया में एक बहुत अजीब सा ट्रेडिशन है, हम फिल्मों की टिकट्स खरीदते हैं और बिना पता चले उनसे अपनी पर्सनालिटी भी खरीद लाते हैं। कभी हेयर स्टाइल, कभी कपड़े, कभी बोलने का लहजा और कभी जीने का तरीका। एक वक्त था जब तीन दोस्त अगर गोवा जाते थे तो लोग बस पूछते थे ट्रिप अच्छा था, लेकिन फिर एक फिल्म आई, उसके बाद हर दोस्तों के ग्रुप को लगा गोवा जाना तो बनता है।
1: ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम दोस्त थे, हैं, रहेंगे हमेशा।
0: उस फिल्म का नाम था दिल चाहता है। 25 साल पूरे हो चुके हैं इस आइकॉनिक मास्टरपीस को, और सोचो एक फिल्म ने कितनी खामोशी से पूरे देश का एटीट्यूड बदल दिया था। आमिर खान की वो स्टाइलिश दाढ़ी सलोन की रेफरेंस फोटो बन गई, फरहान अख्तर के डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की भाषा बन गई। वो सबसे बड़ी बात, उस फिल्म ने हमें सिखाया कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, कभी कभी साथ बदलने का नाम भी होता है। इसलिए 25 साल बाद भी दिल चाहता है पुरानी नहीं लगती। हर जनरेशन को लगता है कि ये फिल्म तो शायद हमारे लिए बनी थी, और उसी साउंड ट्रैक से एक गाना जो आज भी उतनी ही मुस्कुराहट दे जाता है। दिल चाहता है कि मैंने बहुत सारे गाने आपको सुनाए हैं ओवर द इयर्स, ओवर द एपिसोड्स, लेकिन दिस वन इज द फन सॉन्ग। दिस इज वो लड़की है कहां, शान और कविता जी की आवाज में, माय रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक। टॉप 20 रिवाइंड।

प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 11।

0: कुछ गाने अच्छे होने के बावजूद वैसे महसूस नहीं होते जितना हमने शायद उनसे उम्मीद लगाई होती है। वे जुनून के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही मुझे लगा कि शायद बात सिर्फ कॉम्पोजिशन की थी ही नहीं। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो एक दुनिया है, और उस दुनिया की खामोशी, उसका दर्द, उसके किरदार और उसकी तन्हाई, ये सब मोहित सूरी ने बनाई थी। इसलिए जब मोहित और मिथुन साथ साथ आते हैं तो गाने सिर्फ साउंड ट्रैक का हिस्सा नहीं रहते, वो कहानी की धड़कन बन जाते हैं, और शायद मिथुन भी इस बात से वाकिफ हैं।
1: मैं खुद तो एक जरिया मानता हूँ अपने आप को। मुझे लगता है मोहित सूरी कैसे निर्देशक है जो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं कि धुन की जो बारीकी होती है कि उसको। कई बार मैं एक कंपोजर या एक म्यूजिशियन होने के नाते मैं एक अरेंजर भी हूँ, मेरे पिताजी भी बहुत नामचीन अरेंजर रहे म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इंस्ट्रूमेंट्स डालूं, मैं इसमें और कुछ करूं, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी है मोहित की जो मुझे लगता वो इसको कभी भी क्या कहते हैं भ्रष्ट होने नहीं देते, वो कहते हैं उसकी सादगी बरकरार रहे, यही हमारा शस्त्र है।
0: इसी पार्टनरशिप ने हमें आशिकी 2 दी, सैयारा दी और बहुत से यादगार लम्हे दिए। लेकिन अगर मोहित सूरी और मिथुन की दुनिया से मुझे सिर्फ एक गाना अपने साथ ले जाना हो तो मेरे लिए हर बार वो गाना होगा एक विलन का, हमदर्द, अरिजीत सिंह की आवाज में। दिस वन इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक। स्पेशल।

0: डायरेक्टर होता है जो एक्टर्स से परफॉर्मेंसेस निकलवाता है और एक डायरेक्टर होता है जो विजुअल्स या एक्शन के लिए याद रखा जाता है। एंड देन एक मोहित सूरी होता है जिसके सिनेमा में म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, म्यूजिक ही कहानी सुनाता है। इसलिए चाहे जहर हो, जन्नत हो, आशिकी 2 हो, एक विलन हो या फिर सैयारा हो, उन फिल्मों के गाने फिल्म खत्म होने के बाद भी दिल के अंदर चलना बंद नहीं करते। नौ गाना नंबर 5 था बंधु फ्रॉम कॉकटेल 2, लेकिन नंबर 4 पर है आवारापन 2 का टाइटल सॉन्ग, जिस फिल्म के साथ मोहित सूरी का कोई कनेक्शन नहीं है। और शायद इसलिए जो इम्पैक्ट हम इंतजार कर रहे थे कि ये साउंड ट्रैक क्रिएट करेगा, उस इम्पैक्ट का अब तक थोड़ा इंतजार है। तो क्या है वो चीट कोड म्यूजिक और मूवीज के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन का? मोहित ने खुद उसका राज बताया।
1: सैयारा में भी ये बात बोली जाती है पिक्चर में कि हिट गाने आते हैं चले जाते हैं, 4 महीने बचेंगे, लोग नाचेंगे और चले जाएंगे, बट जो गाने रह जाते हैं ना वो दिमाग में नहीं, वो दिल में रह जाते हैं। जितना आप एफर्ट और इमोशन आप खुद को डालोगे गाने में ना, उतना आप मुझे लगता है वो यूनिवर्सल होता है। तो गानों में वो अपने आप को फीलिंग डालना, आजकल लोग थोड़ा सा एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि 3.5 मिनट का ये गाना बनाओ, सैयारा टाइटल गाना 6.5 मिनट का है। मुझे लगता है जब तक इमोशन रहता है वो खुद रोल अपना पोर्शन काट के रील बना देंगे, मैं क्यों उनके लिए रील बना के उनको ये दूँ। तो आई थिंक हम लोग आजकल दिमाग से गाने बना रहे, दिल से नहीं।
0: यार बस यही फर्क है, और शायद इसलिए आज जब आवारापन 2 आ रही है, सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस होती है वो खुद मोहित सूरी हैं। क्योंकि पहली आवारापन रिलीज के वक्त फ्लॉप जरूर हुई थी, लेकिन सोचो ना, वक्त के साथ मोहित ने उसे एक कल्ट फिल्म बना दिया। फिर भी एक गाने ने लोगों का दिल जो है वो जीतना स्टार्ट कर दिया है। से दूसरे ही हफ्ते में 5 स्पॉट्स ऊपर एक जबरदस्त छलांग लगाई है अमाल मलिक के इस गाने ने, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने एंड वर्ड्स है रश्मि विराग के। इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर ऑन नंबर 4, दिस इज ये आवारापन।
2: नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3

my God, Chinnari Chinnari after so many weeks has finally climbed to number 2. Even though ye ek remake gana hai, even though it has nothing on the original song from BB number 1 starring Salman Khan and Sushmita Sen, uske bawajood gana jo hai wo track kar raha hai audience ke saath, and that is why itne high spot par hai. But hey, is hafte ek aur baat pata chali and samajh aaya कि कभी कभी बॉलीवुड एक एक्टर को फ्लॉप डिक्लेयर करने की इतनी जल्दी में होता है कि वो भूल जाता है कि ऑडियंस ने तो उसे कब का अपना बना लिया था। कभी कभी

डूड 11 साल बाद इमरान खान अपने कमबैक फिल्म को अनाउंस कर चुके हैं एंड ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की हुई क्योंकि इमरान कभी सुपरस्टार थे ही नहीं लेकिन वो हर कॉलेज की कैंटीन में जरूर रहते थे।

यू माइट नॉट लाइक द फिल्म, लेकिन उनकी फिल्मों में एक ऑनेस्टी थी, एक ऑकवर्डनेस थी जो उन्हें हीरो कम और अपना दोस्त ज्यादा बना देती थी। यस, हर फिल्म नहीं चली। लेकिन शायद इन्हीं फेलियर्स ने इमरान को एक्टिंग से ही दूर कर दिया। लेकिन वक्त का भी अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। जिस एक्टर ने रोमांस के साथ करियर शुरू किया था, वो 11 साल बाद फिर एक रोमांटिक फिल्म के साथ ही लौट रहा है। फिल्म का नाम है अधूरे हम अधूरे तुम, एंड देखते हैं कि इस बार कहानी क्या मोड़ लेती है। और जो रोमांस की बात निकली है, तो उस एक्टर की तरफ चलते हैं जिसने इमरान खान के डेब्यू के 2 साल बाद ही खुद डेब्यू किया था, लेकिन आज वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन चुका है। नंबर 1 पर एक बार फिर रणवीर सिंह का गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। नंबर 1।

0: और इसी के साथ एक और काउंटडाउन, एक और बात फिर साबित हो गई है कि हिट्स आते रहेंगे लेकिन सिर्फ वही गाने और फिल्में टिकती हैं जो दिल में अपनी एक स्पेस बना लेती हैं। नंबर वन पर लगातार डोमिनेट कर रहा है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। बट दैट इज इट फॉर द मिर्ची टॉप 20 दिस टाइम अराउंड। मिलूंगा आपसे अगली बार, तब तक म्यूजिक सुनते रहिए, खुश रहिए, एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Radio Mirchi, it's hot.
3: Mirchi, it's hot.

में गाँव है रेला, ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला। कैसा रहा यका यकी, नाचो नाचो नाचो।

Mitchie, it's hot.

0: कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।
1: बचपन

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

देख के तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: शुभ बादशाह रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

देखो, तुम माइक के उस पार हो, मैं माइक के इस पार हो। तुम्हारे हाथ में कॉफी चाय या ब्रेकफास्ट है, मेरे हाथ में माइक है। एंड कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, थैंक गॉड मिर्ची मॉर्निंग्स ने मुझे उठा दिया, वरना अलार्म क्लॉक की आवाज सुन सुनकर तुम्हें परेशान हो गई थी। हे देयर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, जो कि अभी अभी शुरू हुआ है। एंड नाउ वेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, पैकिंग टिफिन, ड्रॉपिंग योर किड्स ऑफ टू स्कूल, या फिर प्रिटेंड कर रहे हो जस्ट रेस्टिंग योर आईज फॉर 5 मोर मिनट्स व्हाइल यू बिकम अ बुरिटो इन योर ब्लैंकेट। आज का प्लान काफी सिंपल है। काफी सारी बातें होने वाली है, काफी सारा नॉस्टैल्जिया होने वाला है, बहुत सारी गुड वाइब्स होने वाली है, एंड इनफ मिर्ची एंड मसाला टू मेक योर मॉर्निंग्स अ लिटिल मोर मिर्चीदार। And if you're enjoying the ride, come say hi to me on Instagram and X. मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp पर number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay.

follow me on my channel. Already

Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड चलो टाइम मशीन में बैठकर पता करते हैं आज का दिन क्यों खास था। 1877 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एसएफ हॉल डिस्कवर डायमोस, मार्स का छोटा आउटर मून। फिर 1919 में इंडिया वेलकम्ड अ फ्यूचर स्पेस लेजेंड डॉक्टर विक्रम साराभाई, बॉर्न इन अहमदाबाद। लेटर ही बिकेम नोन एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। 1981 में IBM ने अपना फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर दी IBM PC 5150 स्टोर्स में सेल करना स्टार्ट किया। और 1990 में सू हेंड्रिक्सन डिस्कवर्ड सू, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट टीरेक्स फॉसिल एवर फाउंड। एंड देयर इज मोर। 1994 में मेजर लीग बेसबॉल प्लेयर वेंट ऑन अ मैसिव स्ट्राइक दैट लास्टेड 232 डेज, कैंसलिंग द वर्ल्ड सीरीज। एंड 2000 में द रशियन सबमरीन कुर्स्क सैंक आफ्टर द ऑनबोर्ड एक्सप्लोजन, किलिंग ऑल 118 पीपल अबोर्ड। एंड टुडे इज ऑल्सो इंटरनेशनल यूथ डे। सो वेदर यू आर 18 और 48 एंड स्टिल गूगलिंग कैन एडल्ट्स एक्चुअली फिगर आउट लाइफ, कंग्रेचुलेशंस, यू आर यंग एट हार्ट। And now follow me at Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. Instagram or X पर मेरा यही handle name है, और WhatsApp number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Good morning. It's Priscilla on Mercy Mornings and here's your weather check because before you leave the house you need to know aaj kya kya carry karna hai saath mein umbrellas, sunglasses ya phir dono. Right now we are at 70 degrees Fahrenheit and it's cloudy. It's feeling like 71 degrees Fahrenheit aur abhi weather jo hai it's relatively nice. शुगर करो ऊपर वाले का एंड डोंट गेट टू कंफर्टेबल बिकॉज शाम के 5 बजे तक सन तुम्हारे साथ ही रहने वाला है विद टेम्परेचर्स क्लाइंबिंग टू अ हाई ऑफ 87 डिग्रीज फारेनहाइट एंड विद ह्यूमिडिटी सनशाइन एंड विंड प्लेइंग देयर गेम द 87 डिग्रीज फारेनहाइट कुड फील लाइक 90 डिग्रीज फारेनहाइट मतलब आज थर्मामीटर के भाव काफी बड़े हुए हैं. यस्टरडेज हाई वॉज 87 डिग्रीज फारेनहाइट सो टेम्परेचर वाइज आज थोड़ा सा हाई रहने वाला है. अब रेन वाइज देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में देयर वाज जीरो रेन बट वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 8 millimeters ओवर द नेक्स्ट 24 hours सो कीप दैट अम्ब्रेला हैंडी स्पेशली इफ यू आर हेडिंग आउट लेटर. अराउंड 5 PM तक थिंग्स विल टर्न पार्टली क्लाउडी सो मॉर्निंग की सनशाइन जो है तभी तक रहने वाली है. आफ्टरनून की हीट भी तभी तक रहने वाली है लेकिन इवनिंग के क्लाउड्स तब आ जाने वाले हैं. सो आज के दिन बाहर निकलोगी तो लेयर के प्लेयर बनो. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर वेयर योर SPF 50++++ एंड ऑफ कोर्स कीप मिर्ची की वाइब्स ऑन. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस दैट इज MIRCHIPRIS. टैग मी इन योर एस्थेटिक वेदर पिक्चर्स एंड व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करो 9033 मिर्ची पर दैट्स 9033 647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.
1: मिर्ची इट्स हॉट.

I'm Priscilla and this is Mirchi. Aavaka 3, jahan par tumhe teen updates milti from around the world, only on Mirchi Mornings. सबसे पहले न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोरान ममदानी'स एडमिनिस्ट्रेशन इज रोलिंग आउट लार्ज कर्बसाइड गार्बेज कंटेनर्स अक्रॉस न्यूयॉर्क एज पार्ट ऑफ अ प्लान टू गेट दोज इनफेमस ट्रैश बैग्स ऑफ द साइडवॉक्स। द ब्रॉडर प्रोग्राम एम्स टू कंटेनराइज रेजिडेंशियल ट्रैश सिटी वाइड विद थाउजेंड्स ऑफ स्पेसेस प्लान्ड। मतलब कि न्यूयॉर्क में अब गार्बेज का डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट बन गया है। नंबर टू पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ हैज बीन अपॉइंटेड बाय रशिया एज इट्स आर्बिट्रेटर इन एन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग यूक्रेन स्टेट ओन्ड बैंक ओशाद बैंक। द केस कंसर्न्स क्लेम्ड लॉसेस इन्वॉल्विंग एसेट्स इन यूक्रेनियन रीजन्स अफेक्टेड बाय द रशिया यूक्रेन वॉर। अ थ्री मेंबर ट्रिब्यूनल विल हियर द डिस्प्यूट। एंड लास्टली आईपीएल से रिपोर्ट सेज Hardik Pandya explored a possible return to Gujarat Titans but reportedly wanted the captaincy as a condition. Gujarat Titans reportedly said no. The franchise has discussed a possible return with current captain Shubman Gill, who was reportedly open to the move. However, Pandya's spokesperson said he had no direct conversations with the franchise about a transfer. And that's it for Mirchi Aavaka 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Chalati ho Mirchi dar bangers tumhare liye. Stay tuned and stay hot.

आज का बर्थडे गैंग इज लोडेड विद बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एंड फैशन एंड पॉलिटिक्स एंड वन मैन हु लिटरली टोल्ड अस टू गेट अ बेबी गॉड बैक. आज है ऑगस्ट 12th. मेरा नाम है प्रिसिला. शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड हे, इफ इट्स योर बर्थडे, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू जी. एंड बॉलीवुड साइड पे वीव गॉट सारा अली खान, जिन्होंने केदारनाथ, सिम्बा एंड लव आजकल में काम किया. एंड इंटरनेशनली बर्थडे केक गोज टू कैरा डेलेविन, द मॉडल टर्नड एक्ट्रेस विद अमेजिंग आईब्राउज. देन वीव गॉट बेन एफ्लेक के छोटे भाई केसी एफ्लेक, हु इज ऑल्सो एन ऑस्कर विनिंग एक्टर एंड डायरेक्टर. And then we've got Lakeith Stanfield, known for Atlanta and Judas and the Black Messiah. And then there's Sir Mix-a-Lot. Yes, that's Sir Mix-a-Lot, the rapper behind Baby Got Back. So agar aaj ke din tumhara bhi happy birthday, to congratulations. Sabse pehle tum kaafi amazing list ka part ho and tumhara birthday soundtrack to set hai. And saath mein aaj ke din we've got the investor and philanthropist George Soros and closer to home, Karnataka's political veteran Siddaramaiah. To aaj ke din khao piyo, aish karo aur apne बर्थडे शाउटआउट्स अपने लिए या अपने फ्रेंड के लिए मुझे भेज सकते हो. मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. साथ में कनेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पर भी. इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करती हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: हेलो, एंडिंग द सेकेंड आवर ऑफ मिर्ची मॉर्निंग्स विद अ बैंग, यानी कि मिर्ची मॉर्निंग्स पर आने वाली है अब गोल्ड रेट अपडेट। मेरा नाम है प्रिसला
1: राज। विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,020, $4,020 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, और इस साल के बिगनिंग में गोल्ड $5,600 पर ट्राउंस पीक टच कर चुका है। आज करेक्शन के साथ $4,020 पर ट्राउंस डेफिनेटली एंट्री पॉइंट पड़ती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। 1 ounce, 10 ounce, 100 grams, किलो बार्स, पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए राज ज्वेल्स की टीम के साथ कनेक्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुनी तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट विथ मी प्रिसला। ऑफ कोर्स फॉलो मी इंस्टा एंड एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। For more such updates, stay tuned and stay hot.

0: AG, the gangster.
1: Hey there, this is Priscilla with you और सुन रहे हो मिर्ची आवक है 3 only on मिर्ची mornings. सबसे पहले न्यूयॉर्क हैज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड ऑगस्ट 15th एज इंडियन इंडिपेंडेंस डे रिकॉग्नाइजिंग द इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी एंड इट्स कंट्रीब्यूशंस टू द स्टेट एंड यस फॉर ऑल अस देसीज ऑन द ईस्ट कोस्ट दिस वन फील्स प्रीटी स्पेशल मतलब न्यूयॉर्क में भी 15th ऑगस्ट पे फुल देसी एनर्जी तिरंगा मिठाई बॉलीवुड प्लेलिस्ट एंड अंकल्स एंड आंटीज का इंडिया में तो ये होता था लेक्चर सुनने को मिलेगा नंबर 2 पर फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज बैक्ड proposed US tariff of up to 100% targeting countries that buy Russian oil, including India. The proposal is part of wider efforts to pressure Russia over the war in Ukraine. Important detail, this is a proposed tariff framework, not a 100% tariff automatically imposed on India today. Johnson reportedly said the tariff should really hurt. And lastly, from sports, the 2026 Men's Hockey World Cup begins August 15th in Belgium. And in the Netherlands. And AC hockey fans, here's your trivia flex. Pakistan leads the Men's World Cup with 4 titles, 1971, 78, 82 and 94. The Netherlands, Australia and Germany have 3 each, while India and Belgium have 1 apiece. I know cricket may dominate the family WhatsApp group, but hockey has some serious history too. And that's your Mirchi Avaka 3 with me, Priscilla, on Mirchi Mornings. Follow me, Mirchi Pris, on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp ka number hai 9033Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग, इट्स प्रिसिला विथ यू. वेलकम टू राशी जोन पार्ट वन, जहां पर हम बातें करेंगे राशियों के बारे में ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग.
1: मिर्ची राशी जोन.
0: एरीज यानी कि मेष राशि, विजन काफी क्लियर है, सो वर्क प्रोजेक्ट्स को कॉन्फिडेंटली असेस कर पाओगे. बस स्पीड थोड़ी सी स्लो रखो. एक शॉर्ट आउटडोर वॉक स्ट्रेस को रीसेट कर सकता है. लकी कलर तुम्हारा है टील एंड लकी नंबर इज 8. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एनर्जी स्ट्रांग है, बॉडी भी कोऑपरेशन मोड में है. न्यूट्रिशियस फूड चूज करो और ट्रस्ट करो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना. हाँ भाई, फ्राइज भी फूड होता है, लेकिन आज थोड़ा सैलेड की तरफ ध्यान देना. लकी कलर फॉर यू इज कोरल. लकी नंबर इज 4. जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, स्केड्यूल में थोड़े से डिलेज या सडन चेंजेस पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं. हर चीज का फोरेंसिक एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है. इवनिंग को समवन क्लोज के साथ थोड़ा चिल प्लान बनाओ, सब सही हो जाएगा. लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 3. कैंसर यानी कर्क राशि, इंट्यूशन आज ऑन पॉइंट है. कुछ होने से पहले ही वाइब पकड़ लेते हो तुम. इस क्लैरिटी को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में यूज किया जा सकता है. जस्ट अ थॉट. लकी कलर फॉर यू इज सिल्वर. लकी नंबर इज 7. लियो यानी कि सिंह राशि, इमोशनल रीसेट का पीसफुल विंडो मिल रहा है. फैमिली के साथ कंफर्टिंग पॉजिटिव मोमेंट्स एंजॉय करो. आज मैं सब हैंडल कर लूंगा मोड से थोड़ा सा ब्रेक लो और थोड़ी सी हेल्प मांगो. लकी कलर फॉर यू इज एम्बर. लकी नंबर इज 1. वर्गो यानी कन्या राशि, पर्पस क्लियर नहीं है तो रशिंग से फ्रिक्शन बढ़ सकता है. पेस को स्लो करो, स्पेशली मनी मैटर्स में. स्प्रेडशीट्स को भी सांस लेने दो भाई. लकी कलर फॉर यू इज ऑलिव. लकी नंबर is 6. And that was Rashi Zone Part 1. मैं of course हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. मुझे connect करो Insta और X पर. मेरा handle है Mirchi Pris and WhatsApp पर number है 9033Mirchi. That's 9033647244. अब बारी है झमाझम मिर्ची दार गानों की. थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ. Stay tuned and stay hot.

0: this is Priscilla welcoming you back to Rashi Zone ka part 2 only on Mirchi Mornings.
1: Mirchi Rashi Zone.
0: लीब्रा यानी कि तुला राशि, रेस्टलेसनेस थोड़ी सी सरफेस पर आ सकती है, बट यूज कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन. रिव्यूड इन्वेस्टमेंट्स में फेवरेबल पोटेंशियल दिख रहा है, सो वाइज चॉइसेस मैटर. लकी कलर इज सफायर ब्लू, लकी नंबर इज 11. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, छोटी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थोड़ी सी फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती है आज. इश्यूज को रूट तक समझो, लेकिन मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस को आज होल्ड पर रखना ही बेटर है. लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 5. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, फ्रेश स्टार्ट एनर्जी इज हियर. करियर हो या रिलेशनशिप हो, न्यू बिगिनिंग्स को एम्ब्रेस करने का दिन है. ओल्ड बैगेज को कैरी ऑन में डालकर क्यों घूम रहे हो. लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 9. कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आज तुम लोगों के लिए स्टेबलाइजिंग फोर्स बनोगे. वर्क प्लेस में हार्मनी क्रिएट करो. वाइल्ड फाइनेंसेस लुक स्टेडी, बेसिकली ऑफिस का अनऑफिशियल थेरेपिस्ट आज से तुम हो. लकी कलर फॉर यू इज मस्टर्ड, लकी नंबर इज 2. Aquarius यानी कुंभ राशि, एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन या मीटिंग कुड लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन यू. योर इनोवेटिव आइडियाज शेयर करने का टाइम आ चुका है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड स्पेंडिंग से बचने का टाइम भी चल रहा है. आइडियाज रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं, इम्पल्स परचेज जरूरी नहीं है. लकी कलर फॉर यू इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 13. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन, जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन मैटर मोस्ट टुडे. पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखो, because that could open doors professionally too. Slow progress is still progress, okay? Lucky color for you is sea green. Lucky number is 10. And that's it. Your cosmic download is done. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Obviously, on Mirchi Mornings, mere saath yahan bane raho aur social media par bhi. Mirchi Pris is my handle name. That is MIRCHIPRIS. That's on Instagram and X and WhatsApp par. Number hai 9033Mirchi. That's 9033-64724. Stay tuned and stay hot.

जस्ट लाइक दैट माई फ्रेंड मिर्ची मॉर्निंग्स इज रैपिंग अप. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. बट बिफोर आई लेट यू गो ऑन विथ योर डे, हियर समथिंग फॉर ऑल माई देसी फैशन लवर्स आउट देयर इन न्यू जर्सी. फ्रंटियर रास इज नाउ ओपन इन एडिसन ऑन ओक ट्री रोड. वी आर टॉकिंग अबाउट 70 ईयर्स ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप, फ्रॉम गॉर्जियस हैंडलूम साड़ीज एंड ब्राइडल कुटूर टू मेन्स वेयर एंड रेडी टू वेयर. तो अगर तुम्हारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सडनली मैसेजेस ड्रॉप होने लग गए कि बेटा शादी की शॉपिंग कब शुरू कर रहे हो, बेटा शादी आने वाली है, तुमने अपने लिए कपड़े खरीद लिए या नहीं खरीद लिए, बेटा तुम्हारी कजन की शादी है तो अच्छे कपड़े पहनकर आना, कांग्रेचुलेशंस, नाउ यू हैव अ डेस्टिनेशन जहां से तुम ये सारी शॉपिंग कर सकते हो. द यूएसए फ्लैगशिप स्टोर इज एट 1655 ओक ट्री रोड एडिसन. जाकर चेकआउट करना बनता है, अमेजिंग कलेक्शन है उनका. सोक अप द कलर्स, द क्राफ्ट्समैनशिप एंड फुल देसी फैशन वाइब, सब कुछ तुम्हें वहां पर मिलेगा. लेकिन ये याद रखना कि सिर्फ देखने तो नहीं जा सकते, तुम जाओगे पक्का शॉपिंग स्प्री पर निकल जाओगे, ये मेरी गारंटी है. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैंगिंग आउट विद यू दिस मॉर्निंग. मेरा नाम है प्रिसिला एंड यू हैव बीन लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स. थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग्स. अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स ऑन रखते हैं. टाटा बाय बाय सिर्फ मेरी तरफ से है. जाकर कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, 9033647244. अभी के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: सुबह सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज़ जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिड़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। कसी जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रात में कपड़े प्रेस करके बैग जमा के सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है ये इंसान जो है ना, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। So, जो कहां की चीज कहां जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। और हाँ, ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते हैं। इनफैक्ट पता है आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपनी रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड, जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी। हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था। तब बड़ा जोर आता था, लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार। हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीख ली थी। टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार। और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे। बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। On Mirchi, it's hot.

0: ये जादू नहीं है तो और क्या है यार, मतलब वाकई में छोटी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो छोटी रातें लंबी होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में नहीं होती हैं, ये एक्साइटमेंट में भी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ट्रैवल करना होता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है ना, तो अगली सुबह के चक्कर में हम रात भर नहीं सो पा रहे होते हैं और वो रात जो है वो अपने आप लंबी हो जाती है। या तो एक्साइटमेंट होता है या तो एंजाइटी होती है, और मुझे तो कभी कभी दोनों ही होता है, और उस चक्कर में मेरी भी छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, आई एम नॉट कैचिंग फीलिंग्स, आई एम जस्ट अबाउट टू कैच अ फ्लाइट। दैट्स द रीजन की मेरी छोटी रात लंबी हो गई है।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान, दो गानों के मिक्सेस को आपके लिए चला देती हूँ, आपको सुना देती हूँ, और आपको बताना होता है कि ये जो दो धुने आपने सुनी कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं। बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि इन दो गानों के नाम क्या हैं। और स्टे ट्यून्ड रहिएगा विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नो एंट्री, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम तो नो एंट्री था लेकिन सबको इस फिल्म को देखने के लिए एंट्री चाहिए थी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म इतनी मजाकिया और इतनी मजेदार थी ना, मतलब जिंदगी में कुछ भी बवाल चल रहा हो, इस फिल्म को देखते देखते सबने अपनी हंसी निकाली और उस बवाल को उस हंसी में उड़ा दिया है। लेकिन आपको इस फिल्म में वो वाला सीन तो डेफिनेटली याद होगा जहाँ पर फरदीन खान, अनिल कपूर एंड सलमान खान एक ही क्लिप से लटक गए थे एक के बाद एक। ओरे बाप रे बाप, मतलब दिस सीन इज अ मिक्स ऑफ एंजाइटी एंड ह्यूमर। मुझे भी एंजाइटी हो रही थी इस चीज को लेकर कि ये कहीं गिर ना जाए यार, और ह्यूमर भी इतना था यार इस सीन के अंदर कि थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने के बाद मैं हंसने लग जाया करती थी कि यार ये क्या ही कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन जितना मजाकिया देखने में लग रहा था ना, उतना शूट करने में मजाकिया नहीं था, बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी टफ सीन टू शूट, क्योंकि इनको वाकई में ये सीन एक क्लिफ से लटकते हुए शूट करना पड़ रहा था एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रिग केबल्स अटैच करनी जरूरी थी, बिकॉज वो जो टेरेन था वो बड़ा स्टीप था। अब ये सारे सीन शूट करने के बाद ये जब सीन निकल के आया तो भाई फुल पैसा वसूल था ये सीन। और एक मजे की बात सुनो, ये जो सीन जिस स्पॉट पे शूट हुआ था ना फुकेट में, जहां पर ये तीनों के तीनों एक क्लिफ से लटके हुए थे, इस फिल्म के बाद और इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस सीन का नाम ही नो एंट्री स्पॉट रख दिया गया था, अंटिल अ सुनामी वॉश दैट स्पॉट अवे। हाँ, वो स्पॉट कभी हुआ करता था मगर आज नहीं। मगर हाँ, इस स्पॉट को आज भी हम फिल्म में जरूर देख सकते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सल्लू भाई के डोले तो बड़े है ही हैं, साथ ही साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा है यार।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And जब No Entry the movie was being shot ना, at that time, अनिल कपूर of course was the main lead of the film, everybody knew. लेकिन फिर भी सलमान खान ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ करी, because जब बोनी कपूर ने उनको ये स्क्रिप्ट दिखाई, तो सलमान खान को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और जबकि उनका रोल छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने इस रोल को निभाने के लिए मुझसे शादी करोगी की शूट एंड नो एंट्री की शूट में बहुत जगल किया। मतलब कभी वो यहाँ होते थे, कभी वो उस सेट पे हुआ करते थे। एंड इन फैक्ट जो क्रू थी इस फिल्म की, वो भी हमेशा ऐसी रहती थी कि यार कभी भी सल्लू भाई आ सकते हैं अपनी शूट करने के लिए, अपनी शूट कंप्लीट करने के लिए, उनको जहां मौका मिलेगा वो आ जाएंगे। तो वो हमेशा स्टैंड बाय पे रहा करते थे। इनफैक्ट सलमान खान वॉज द वन, जब नो एंट्री की शूट के डिलेज हो रहे थे, तो उन्होंने बोनी कपूर को कहा कि यार पैसों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना काम और अपनी फिल्म खत्म करने के बारे में बात करो, और पैसा वैसा जो भी है ना वो हम देख लेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी, वो उस वक्त सलमान खान ने बोनी कपूर को जरूर दिया था। वहीं अगर बात की जाए फरदीन खान की, तो ये बड़ी मजेदार वाली चीज है यार। मतलब फरदीन खान को कास्ट तो कर लिया था मूवी के लिए, लेकिन जब इनिशियल शूट्स हुए तो अनीस बाजमी को समझ में आ गया था कि यार फरदीन खान की कॉमिक टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी डिलेड है, उनके रिएक्शंस थोड़े लेट आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमेडी एक्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फरदीन खान को अनीस बाजमी ने इतना स्पेस दे दिया कि उन्होंने उनके कैरेक्टर को ही उस हिसाब से डिजाइन कर दिया, ताकि फरदीन खान की एक्टिंग के साथ उनके कैरेक्टर के रिएक्शंस जो है वो ट्यून इन हो पाए। एंड जो फरदीन खान का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन ऐसा दिखाया गया है ना कि स्लो है और स्लो रिएक्शंस देता है, वो बेसिकली उनकी एक्टिंग के टोन से एडजस्ट करते हुए उनके कैरेक्टर को बना दिया गया था। इसे कहते हैं अकल। रिकास्ट करने से तो यही अच्छा था कि कैरेक्टर को ही कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून कर दिया जाए। और इसी के चलते फरदीन खान की कॉमेडी फिल्मों में भी दुकान खुल गई यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बिपाशा बसु जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, that was supposed to be played by प्रियंका चोपड़ा। लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था। लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, टैन टैन, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट

एंट्री हुई ना कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था। अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो है वो पूरी तरीके से कम्प्लीट ही नहीं हो पा रहे थे, यानी कि हुआ था सोने पे अभागा। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए, एंड इनफैक्ट वो कामयाब हुई भी। आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: त्रिदेव का ये गाना

अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यार सारा, दोनों धुने एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुने हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर, जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: आ भी जा, ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। हालांकि गाना थोड़ा सैड है, मेलैंकली है इस गाने के अंदर, लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा और रात को कर विदा दिल रुबा आ भी जा। यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना, दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली। अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में है और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है। इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है, और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा। लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए। क्या बोलते हो, ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ। एंजॉय द ट्रैक। एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, 'cause it's hot.

0: Mitchie. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी होता होगा कि तुमने कोई चीज बहुत मन से, बहुत शिद्दत से बनाई हो, एंड यू वांटेड एवरीबॉडी टू अप्रिशिएट दैट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों को ना तारीफ करने का मन ही नहीं किया. तो डिसअपॉइंटिंग तो लगता ही है. पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और आते ही बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगा था देवानंद और विजय आनंद साहब को, दोनों ब्रदर्स को, जब उन्होंने बनाई थी फिल्म गाइड. तो जब गाइड का प्रीमियर हुआ ना, पूरी इंडस्ट्री वाज इनवाइटेड, एंड विजय आनंद को लगा था कि थोड़ी ऑफ बीट फिल्म है, थोड़ी उनकी जितनी भी कमर्शियली सक्सेसफुल, यू नो, चटपटी मसालेदार बॉलीवुड फिल्में हैं उनसे अलग है, तो लोग आकर के ना उनको अप्रिशिएट करेंगे, कंग्रेचुलेट करेंगे कि कितना अलग कुछ बना दिया है. लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं. नोबडी वॉकड अप टू हिम एंड कंग्रेचुलेटेड हिम, एंड दिस लेफ्ट हिम शैटर्ड कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों. लोगों को एक्चुअली गाइड का क्लाइमैक्स और इतनी अलग फिल्म ना पसंद ही नहीं आई, स्पेशली जो लोग प्रीमियर देखने आए थे, यानी भाई इंडस्ट्री के लोग. फिर क्या हुआ, गाइड यू नो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब बताऊंगी. अभी अभी तो आई हूं, थोड़ा सा इंतजार करो. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

मूवी बॉक्स ऑफिस पे खुली तो एकदम फुल हाउस थी, लेकिन उसके बाद सब डिप करने लगा। लोग आ नहीं रहे थे देखने, टिकट्स बिक नहीं रहे थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म गाइड, जिसमें थे देव साहब, उनके भाई विजय आनंद ने फिल्म बनाई थी ऑन द वेरी वेरी पॉपुलर बुक द गाइड विच वॉज रिटन बाय आर के नारायण। तो मैं बता रही थी कि जब लोगों को ये पता चला कि भाई देव साहब की फिल्म है तो लोग डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे इसको देखने गए, लेकिन लोगों को इतनी अनकन्वेंशनल ऑफ बीट फिल्म और स्पेशली क्लाइमैक्स ना समझ में आने के चक्कर में ना कुछ ही दिनों में इसका कलेक्शन डिप करने लगा। बट कहते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई और लोगों को जब इसका क्लाइमैक्स कुछ समझ में आया तो लोग वापस इस फिल्म को देखने लगे। आई मीन दिस वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसको लोगों ने दो दो तीन तीन बार जा करके देखा एंड इसीलिए बाद में इसका कलेक्शन ओ हो आसमान छूने लगा। दैट इज वाई 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे इस फिल्म ने उस साल। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इन्होंने तो इसको द मिसगाइडेड काइट बोल दिया था। पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म जिसमें थी वहीदा रहमान, जिसमें थे देव आनंद साहब, विजय आनंद ने बनाई थी। मूवी का नाम द गाइड। ये फिल्म जो थी ये अडेप्टेशन थी आर के नारायण की वेरी पॉपुलर फिल्म द गाइड की। तो भाई उनसे यू नो सारी परमिशंस ली गई थी इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा बॉलीवुड का तड़का तो डालना ही था ना, इसीलिए थोड़ा रोमांस एंगल भी दिखाया गया। बट ये बात आर के नारायण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आफ्टर ही सॉ द फिल्म He gave an interview to a magazine जिसमें उन्होंने कहा था कि ये the misguided guide है। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने with me श्रेया। तो बस यहीं पे रहना पड़ेगा।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं आपको बता रही थी कि देवानंद और विजय आनंद ने भाई जब अपने म्यूजिशियंस फॉर द फिल्म चूज किए, उनको हायर किया, तो उसमें थे हसरत जयपुरी साहब एज लिरिसिस्ट। लेकिन कुछ टाइम देने के बाद ना दोनों भाइयों को हसरत जयपुरी साहब के गाने कुछ समझ नहीं आए, तो उन्होंने शैलेंद्र जी को हायर किया। शैलेंद्र जी ने इस फिल्म के गाने बनाने शुरू किए। लेकिन जब हसरत जयपुरी साहब जा रहे थे और शैलेंद्र जी आ रहे थे, तो हसरत साहब ने ना एक गाना जो आधा अधूरा था वो सुनाया था शैलेंद्र जी को, और उस गाने की जो पहली लाइन थी ना वो शैलेंद्र जी ने रखी। वो गाना ये था, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, ये लाइन दी थी हसरत साहब ने, आगे इसको कंटिन्यू किया शैलेंद्र जी ने।

सो दिस लाइन, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए तू तो ना आए तेरी याद सताए, ये वाली जो लाइन है ये हसरत साहब की थी, लेकिन अगर आप क्रेडिट देखोगे तो ये शैलेंद्र जी का है, बिकॉज आफ्टर दैट द एंटायर सॉन्ग वाज रिटन बाय हिम. यही गाना कमिंग आउट राइट नेक्स्ट. मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जींस.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

विजय आनंद ने दादा को बोला था कि इस पूरे गाने को ऐसे कंपोज करो जैसे हर स्टैंजा ना अलग गाना है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड, इस फिल्म की बातें और इस फिल्म के गाने। अच्छा, ये एक गाना जो गाइड का था ना, दिस वॉज अ वेरी टफ सॉन्ग टू कंपोज। एक तो ये लंबा भी था, इसमें हरकतें भी बहुत सारी थी और दादा को ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो विजय आनंद हु इज डायरेक्टिंग द फिल्म, उन्होंने पता है उनसे क्या कहा कि हर स्टैंजा को ऐसे कंपोज करो जैसे कि ये अलग गाना हो। एंड विजय आनंद ऑल्सो थॉट कि गाइड में ना वो हर स्टैंजा को अलग अलग जगहों पे दिखाएंगे, ऐसे ही पिक्चराइज करेंगे, जबकि वो हुआ नहीं बिकॉज वहीदा रहमान का खूबसूरत डांस इस गाने में था। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दादा ने अपना पूरा बटुआ खाली कर दिया था मेलोडीज से भरा हुआ फॉर दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड 1970s में फिल्म आई थी गाइड, जिसकी आज बात हो रही है। सो नवकेतन फिल्म्स यानी देव साहब का बैनर और उनके भाई विजय आनंद का बैनर, वो हमेशा जब भी फिल्म बनाते थे तो एसडी बर्मन साहब को हायर करते थे। इस बार क्या हो रहा था कि दादा उस टाइम पे आ चुके थे जब उनकी जगह नए म्यूजिशियंस को हायर किया जा रहा था, फिर चाहे वो उनके बेटे आरडी बर्मन साहब ही क्यों ना हो। सो एसडी बर्मन साहब को ना एक मौका, वो एक फिल्म चाहिए थी जिसमें वो अपना मिरेकल एक बार फिर से दिखा पाए, एंड गाइड प्रूव्ड टू बी वन ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपना सारा बटुआ खाली कर दिया। मेलिफ्लुइस ट्यून्स लाइक आओ, गाता रहे मेरा दिल ले लो, तेरे मेरे सपने ले लो, यू नो इतने सारे गाने, कांटों से खींच के आंचल ले लो, पिया तो से ले लो। तो इसी बात पे आज फिर जीने की तमन्ना है। कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया। एस डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लता जी की आवाज़ है और वहीदा रहमान का डांस था, शैलेंद्र जी के लिरिक्स। अप नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव आनंद को लगा कि उनका कोई सिग्नेचर ट्यून, सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं इस फिल्म में, और फिल्म काफी टाइट चल रही, काफी स्ट्रेस में चल रही है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड टुडे। सो देव साहब ने जब ये पूरी पिक्चर बन गई और देखी अपने भाई विजय आनंद हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल उनके साथ बैठ करके ना, तो देव साहब को लगा कि भाई इसमें मेरा कोई सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं, क्योंकि वो जनरली एक आध गाना ऐसा सुपर डुपर हिट देते थे अपनी फिल्म का जिसमें बस वो गुनगुना रहे हैं और चलते जा रहे हैं, जैसे कि हम दोनों में है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता, राइट। तो क्या हुआ, जब पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई फिर इस पे म्यूजिशियंस को वापस बैठाया गया। एस डी बर्मन साहब, शैलेंद्र जी ने गाना लिखा एंड ऑफ कोर्स देव साहब इसमें एकदम अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं और गा रहे हैं मेरा दिल। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब पहला सीन लिया गया तो डायरेक्टर विजय आनंद को लगा कि देव साहब के आगे वैजंती माला तो थोड़ी चबी चबी लग रही है पुरानी जीन्स पे। आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। सो वैजंती माला को इस फिल्म के लिए चूज किया गया था और डायरेक्टर विजय आनंद ने ना ऐसे ही जब फर्स्ट टेक लिया तो दे थॉट कि वैजंती माला देव साहब के आगे थोड़ी प्लम्प लग रही है। अब भाई विचार विमर्श हुआ देव साहब से भी, फिर क्या हुआ, इन केम वहीदा रहमान। और जब वहीदा रहमान आती थी तो एक्टिंग के साथ अपने डांसिंग स्किल्स भी लेकर के आती थी। ये आपको देखने को मिलेगा गाइड में जब उन्होंने वो गाना किया है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है। ओ हो हो पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है ना तो बस इस आवाज़ के पीछे आपको मिल जाऊंगी फेसबुक और इंस्टा पे। हैंडल है मेरा RJ Shreya with Love, that's RJ SHRUYA Shreya with Love।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं

इनको फॉरेन भेजा गया था कलर की टेक्निक को बारीकी से समझने के लिए। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। ये नव केतन प्रोडक्शंस की यानी देव साहब की, उनके भाई विजय आनंद की पहली कलर फिल्म थी। अब हुआ ये कि विजय आनंद ने पहली बार एज एडिटर कमान पकड़ी थी अलोंग विद बाबू शेख एंड गाइड वॉज द फर्स्ट कलर फिल्म। सो विजय आनंद चाहते थे कि हर चीज़ ना एकदम कमाल हो, पहली कलर फिल्म है उनकी खुद की तो इट हैज़ टू बी परफेक्ट। तो उसके लिए उन्होंने सिनेमाटोग्राफर फेली मिस्त्री जी को ना अब्रॉड भेजा था, हॉलीवुड भेजा था टू नो द टेक्निक टू शूट द फिल्म इन कलर एंड इट केम आउट सो ब्यूटिफुल। अगर आप रेट्रो फैन हैं और आपने गाइड नहीं देखी तो क्या आप रेट्रो फैन हैं? और पता है आपको ये किसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज माई मॉम हु सेड कि बाकी रेट्रो फिल्म के बारे में तुम बहुत बात करती हो, गाइड इज अ मास्टर पीस एंड इट इज। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, गाने सुन करके वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है इसी फिल्म की।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव साहब को ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया था। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई, विजय यानी उनके भाई विजय आनंद, हु वाज एडिटिंग द फिल्म, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, चलो एक काम करते हैं, गाना बना लो, बाद में देखेंगे रिटेन करना है कि नहीं करना है। बट बाय द टाइम इस गाने की शूट एंड हुई, ही लव्ड द सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, गाइड फिल्म की बात हो रही है, देव साहब की फिल्म थी ये, एंड इस फिल्म का म्यूजिक देने वाले एसटी बर्मन साहब, गाने लिखने वाले शैलेंद्र जी, और उन्होंने एक गाना लिखा जिसपे वहीदा रहमान ने क्या परफॉर्मेंस दी। द सॉन्ग वॉज, अब ये गाना जब बनने लगा ना तो देव साहब को बिल्कुल नहीं पसंद आया, उनको लगा कि क्यों ही रख रहे हम ये गाना। लेकिन बाय द टाइम ये गाना शूट होकर के एकदम कंक्लूड हो रहा था, ही लव्ड द सॉन्ग, एंड फिर इस गाने को रिटेन किया गया, एंड व्हाट अ प्रिटी प्रिटी सॉन्ग। ये गाना मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ, तो फिर से नहीं सुनाऊंगी लता जी का ही एक और गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

ये मूवी दो वर्जन्स में शूट हुई थी, एक इंग्लिश वर्जन में इन कोलैबोरेशन विद पर्ल एस बक, डायरेक्टेड बाय टेड डैनियल ल्यूस्की, एंड इट वाज टू इंट्रोड्यूस देव आनंद साहब टू वेस्टर्न ऑडियंस। और हिंदी वर्जन उसके बाद में आया जब देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। पहले ये था कि भाई एक ही वर्जन को वापस शायद डब कर लेंगे, लेकिन नहीं, देव साहब को लगा कि भाई ये तो चीटिंग हो जाएगी हिंदी ऑडियंस के साथ। और फिर हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैशेस भी हुए थे, जिसकी वजह से देव साहब ने इसकी बागडोर संभाली, अपने भाई को भी संभलवाई और नफ केतन प्रोडक्शंस के अंडर में ये फिल्म को बनाया गया। टॉकिंग अबाउट द फिल्म ऑफ कोर्स गाइड, पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो हाईवे पे भी जाना है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हेट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। आई मीन पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नज़रें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नज़र आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज़ मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो डैश है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारा बेटा है।
2: श्रुति, श्रुति, श्रुति।
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम मिर्जापुर द मूवी के ट्रेलर का रिएक्शंस सिर्फ मेरे तरफ से नहीं बट मेरे ऑफिस के जो मेरे दोस्त हैं उनके तरफ से भी लें। हेलो क्रिश एंड गौरांग।
4: भौकाल है श्रुति, भौकाल। ट्रेलर नहीं है वो।
1: अच्छा,
5: मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी कसर छोड़ी हुई है ना पिछले एक दो सीजन से, हाँ, वो सब का सब एक मूवी में डाल दिया।
1: और हाँ,
4: मुझे ऐसा लग रहा है ये सीजन 4 है।
1: ओ माय गॉड, सीजन 4 अल्टीमेट लेवल का बन के आया है। वैसे मैंने भी इन लोगों के साथ ये ट्रेलर देखा है एंड भाई साहब, हाँ, ये दोनों मुझे जज करेंगे अगर मैं बोलूंगी कि मैंने मिर्जापुर का सिर्फ सीजन 1 देखा है, वो भी कुछ एपिसोड्स मिस्ड हैं उसमें से। हाँ, ये दोनों नजर गड़ा रहे मेरे ऊपर। बट यार, मूवी देखने के बाद मुझे, मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगता है कि आज ही तीनों सीजन खत्म करने वाली हूँ मैं।
4: वैसे शुक्र है कि ऐसा सुनने में आया है,
1: हाँ,
4: कि सीरीज का इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है।
1: अच्छा,
4: और वहां पे जो बबलू भैया को बदल दिया उससे थोड़ा दर्द हुआ।
1: वैसे अभी जो दूसरे वाले बबलू भैया आए हैं उनका रोल किरदार कैसा लग रहा है आप लोगों को?
4: वायलेंस,
1: वायलेंस फ्रॉम मैक्स।
5: एक टाइमिंग आप देखो, इस समय कौन सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है?
1: कौन?
5: रवि किशन जी।
1: हाँ,
5: और इसी टाइम पे
1: और इस टाइम पे रवि किशन का जो ट्रेलर में जो जो पार्ट दिखाया गया है, अरे इसका खून नहीं, हेमोग्लोबिन कम है बे, खून नहीं निकल रहा। और उसके बाद गब गब गब, उफ, गोर है, काफी गोर है ये मूवी।
5: वो एक आदमी एल्गोरिदम सारा समझ गया, कब कौन सी सीरीज में आना है, मूवी में आना है, मीम में आना है, सब समझ गया वो आदमी। सो आई एम मोर एक्साइटेड टू वॉच हिम इन द मूवी।
1: ओ माय गॉड
4: बाबू, भौकाल।
1: तो इसी भौकाल को आगे कंटिन्यू करते हैं अपने शो पे। हाँ, वो बात और है कि वहां मिर्जापुर फील्स नहीं मिलेगी आपको, बट फिल्मी तो जरूर होगी। मिर्ची पे दिस इज मी श्रुति, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: खबरदार जो किसी के दिल और जज्बात से खेलने की कोशिश की। मैं तो यहाँ मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। वेर यू हैव टू सेंड मी योर नंबर ऑन माई इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति और फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज इंदौर से नेहा वॉज विद मी बट शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट। बट उसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है राहुल। तैयार है सर?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्या बात है, आई लाइक द स्पिरिट। तो बताइए फिर कि ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें वो एक ग्लैमरस पॉप स्टार बनी है कौन सी है?
3: ग्लैमरस पॉप स्टार बनी है फन्ने खान।
0: यस, फन्ने खान में उनको किडनैप कौन करता है?
3: अनिल कपूर।
0: अनिल कपूर की फिल्म जिसमें वो 1, 2 का 4 करते हैं?
3: राम लखन
0: में उनको किससे प्यार होता है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित की फिल्म जिसमें उनके हस्बैंड उनपे शक करते हैं विद हर बेस्ट फ्रेंड?
3: मूवी का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम।
0: बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे हैं सनम में उनके हस्बैंड कौन है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो एक क्राउन प्रिंस बने हैं?
3: अशोका।
0: हाँ जी, अशोका में कलिंगा की प्रिंसेस कौन है?
3: करीना कपूर।
0: यस, करीना कपूर की फिल्म जिसमें उनको लड़कों से नफरत होती है?
3: कम्बकेश।
0: हाँ जी, कम्बकेश में स्टंटमैन कौन है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो गुलाब खत्री बने हैं?
3: छोटा छत्री गुलाब खत्री, दीवाने में पागल या आवारा पागल दीवाना?
0: जल्दी जल्दी डिसाइड।
3: आवारा पागल दीवाना।
0: यस, आवारा पागल दीवाना में भूलने की बीमारी किसको है?
3: परेश रावल।
0: परेश रावल की फिल्म जिसमें वो भगवान के ऊपर केस करते हैं?
3: ओ माय गॉड।
0: ओ माय गॉड, हमें हमारा दूसरा मिर्ची फिल्म जी मिल गया। बट मजा आया यार गेम खेल के।
3: मुझे भी बहुत मजा आया।
0: चलो फिर इसी बात पे इस मजे को कंप्लीट करते हैं, आपको ये टैग देते हैं
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: बाकी अगर आपके अंदर का फिल्मची थोड़ा फोमो में है तो वरी नॉट, ये गेम कल वापस आएगा। बट उसके पहले मुझे मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति पे अपना नंबर डीएम करना मत भूलना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

मिर्ची, इट्स हॉट। दिस इज समथिंग स्पेशल।